ေရတိထောက်ဆုံးစားရတယ်ဒီလိုပဲကြီးဖတ်ရရခေကဓမ္မကတော့လက်သေးခေဒန်ဝရတော်ရဲ့မဟာရိုက်ကနေဟုကမ္မကြိုင်းချက်လနာနာမည်ကလေးစေနာတာပရမေရှင်သောဟုကမ္မနနာပရမေရှင်သောဟုကမ္မကီယဟာရခဆိုးကဒုက္ခဆိုးကဩစတန်နန္ဒယမဟာနပမန်ချေခေကိုရရနာဟံတမမ္တာရဒွေရှဂျနမဒန်တေရဲတုနာကာမကရောဓလောဘမောဟံကာရတေရဲတုနာဟုကမ္မကြိုင်းချက်လနာਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂੰਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮਾ ਤਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਹ ਸੋ ਸਦਾ ਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੈਸਾ ਸੁਵਦਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਬਰ ਤੈਸੀ ਵੀ ਕਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ ਜੋ ਬਤਾਏ ਸਾਈ ਯੁਗ ਨਾਨਕ ਉਪਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋ ਮੰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਤਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਮਾਨ ਪੰਚ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਅੰਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੱਛੀ ਜਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਨਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਖਤ ਮਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹਰਬਨ ਵਧੀਆ ਰੇ ਮਨ ਅਜਿਬਰਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਹਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੀਤ ਰਾਤ ਅਵਧੂਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆਪੇ ਪਾਓ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਜਾਰੇ ਕਸਮ ਤਰਾ ਕੇ ਕਵਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਏ ਕਾਂਕੋ ਜਦੇ ਕਾਂ ਹੋਇਆ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੇ ਸਾਧ ਪਾਨ ਕੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਕਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਭ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਜਲ ਗਈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਜਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਪਿਆ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਏ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਾਓ ਲੱਡੂ ਪਕਾਓ ਤੇ
खुश होगो, प्रसन्न होगो, नचो टपो, ऐसे बात क्या है, तेरा इतना नुकसान होया, क्या फिर दसूंगा। पहले तुम खुशी में नाओ, आप भी नचे टपे, ऐसा समाजी सानू नित नित आवे, सारी खुशियां मनाओ। ते उसने भी बड़ी खुशी मनाई। फिर कुछ समय मगरों ओरी स्त्री राजी होके आ गए, कुबाल भी राजी, कन्या भी राजी होके आ गए, दो तो पहले मर गए, जल गए से, मकान भी जल गया। कुछ समय मगरों उन्होंने हजारों गुना चीजा मिल गई, अगे नालों ज्यादा चिवार पै गए, गोरी से लग गए, नौका लग गए, तो बल्कि कैंबर कैंबर हो गए। एक दिन पता नहीं उसके मन के बीच में क्या, फिर सोच पिया, फिर हो लग गया, पिटन लग गया, लोगो मेरा कुछ नहीं रहा, तुसी भी रोवो, जरा आवे तुसी भी रोवो, कंधा जिस मारे मेरा कख नहीं रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ गया, आलोक भी लोक भी गया, तुसी भी रोवो। वो कहते बात क्या है, अगे तेरा सब कुछ जल गया सा, तो तू गमी च खुशी मना रहा सा, हूं तेन सब कुछ मिल गया, तू गमी मना कहना रोवो रोवो, मेरा सब कुछ लुटिया गया, लोगों में मारिया गया, बात क्या है। कहना बाद संत महात्मा आ गए, उन्होंने जाके पूछो ब्रह्म ज्ञानी की गति, ब्रह्म ज्ञानी जाने उठे जाके उन्हें संता पगाए, महाराज दसो की सबब है। वो कहते जो भगत है, ज्ञानवान है, हूं तो परमेश्वर दुनिया चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं चाहती है, एक परमात्मा चाहिए है, जिस नाम के दसो ही वट राजा। कह तो कबीर सुनो तो लो ये राम नाम बन मुक्त न हो, कौन नानक तत्व विचारा बिना भजन नहीं छुटकारा। जेरा संसार तो पार होना चाहता, जन्म मरण कटना चाहता, चुरासे चो निकलना चाहता, हूं तो परमात्मा चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए। बेबी नानकी कहते मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, न बिसरो बलको दी जो वेहो भैन पकी जो कृपा की जो। पहला वो घर में अग लग गई, पता नहीं कितना लग गया है, जल गया, ओदा अद्धा परिवार हस्पताल में गया, अद्धा मर गया। उन्होंने कहीं जाके दसिया संत महात्मा के पास, वो आया, वो सोची पै गया, कहना मेरी बिरती में इन्नी फर्क तो नहीं पाया है, क्यों दुनिया के फिर चिंता च बिरती में तो फर्क पैना होया, शरीर में कोई रोग हो जाए बिरती में तो फर्क पैना होया, कोई नुकसान हो जाए परमेश्वर भुल जाता है, क्रोध लोग जी परमात्मा भुल जाता, वो सोचता मेरी बिरती में फर्क तो नहीं पाया है, घर में अग लगने करके परिवार मरने करके बिरती च फर्क नहीं पाया है। कहना खुशी मनाओ, दुनिया का चीजा की है, लकां ही आईया, लकां ही चाहिए चले गई है, ये तो छल रूप है, धोखा फरेब कदे है, कदे है नहीं, सुपने मंग झूठिया है, सुपने सहित चेत मूर्ख लाया, मेरी बिरती पूरी परमात्मा ने खुशी मनाए, इन बड़ी खुशी मनाई। थानू कहना नचो, खुशी होवो, मेरी परमात्मा के पास बिरती कायम है, बाकी चीजा मैंने की करना, अजय मर गया तो सारिया छड़ ना, कोई ना आई ना कोई जाती है, मेरे की छाया से लावे बिन से मन पिस्तावे, जो दिशे सो चलन हार लपटी होते हैं, हार बठाऊ से जो लावे ने ताकि हाथ ना भी ना रमो तो नरक चला जाता, परमेश्वर का मैं मुक्ति करता। खुश होया, प्रसन्न होया, थानू भी कहना नचो टपो, आप भी नचते टपता, बिरती मेरी कायम है, फर्क नहीं पाया। फिर स्त्री भी आ गई, बाल भी आ गया, राजी हो गया, होर पुत्र भी हो गया, घर भी हो गया, हजारों गुणा धन भी मिल गया, पक्के भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, बाग बगीचे हो गए। फिर पता नहीं कोई पिछला पाप आ गया, पता नहीं अन्न मैला खा लिया, महाराज भी जित नहीं लगता, इन्हें लुटिया गया, मारे आ गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा, लोग खत्म हो गया, क्यों नाम ते बिना सारे काम कमे है, अगर कार चले कितने ना काम मेरे साथ संग सकल परम डाल दे गोविंद को नाम ले अंतवार संगत रहे, यही एक जाता है इस संसार के बीच में, जब तक दुनिया च मनुखा दे फैला देने वाली चीज बिना नाम से कोई है ही कोई नहीं है, परमेश्वर पाया सबको पाया, परमेश्वर ने पाया कुछ नहीं पाया, बाकी की जगह की तो सिर्फ रहा है परमेश्वर से भुलिया व्यापन सब विशेष सदा कुमारी मारिया गया, लोग लुटिया गया, मेरा कुछ नहीं रहा, बिरती परमात्मा के पास नहीं लगती, कोई पहले पाप आ गए या कोई धन महिला खा लिया, कबीर साहब मांग तो यह चेतन नहीं लगता, भगतान तो परमेश्वर चाहिए, भगतान तो परमात्मा चाहिए, हूं तलो मच्छी लगे मच्छी जल मंगल गौ बच्चे मंगल, जिन्ना चेत तो ना लगे रोंद पिटते रहना, मिन्नत करते रहना है, क्यों जी जे गडवंका पाई दो कोटर तेवर खाई पांच पचीस मोह मधुमस आटी पर मनवाया,
जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया, काम कुवारी दुख सुख दरवानी, पाप फोन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबट दुंदर, मनवासी राजा, स्वाद सुना टोप ममता को, कुबुद कुमार चिढ़ाई तृष्णा तीर है एवं घर लिखन जाए। महाराज कोई ऐसा कहते मेरा मन परमेश्वर के पास नहीं लगता, मन जिते अड़ जाता है, रोंदा रोटी नहीं खाता, जंगल में जाके बेनतियां करता है, मैं घर नहीं जाना, खाना पीना कुछ नहीं आएगा, यही तो वस्तु संसार के बीच में पाने वाली है। अंतर्यामी परमात्मा ने दया आई, महाराज ने कहा कबीर तेन दसा तेरा चित कि परमेश्वर के पास लगेगा, प्रेम पलीता सुरतो भाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म वगन सहजे पर जाले एका चोट समझाया, ससन तो खुला लड़ने लगा तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुरु की कृपा ते पकड़े गाट को राजा, भागवत सागर सिमन की कटी कान पर पासी दास कबीर छड़ी रूप धारियों को युक्ति डाल देते। इस तरह वो भी भगत ने भी युक्ति डाल देते, मन परमात्मा के पास लड़ने में जुगते गए, महाराज जपे जाओ जपे जाओ जपे जाओ जपे जाओ हटो ही ना, महाराज का पाठ सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ हटो ही ना, कीर्तन सुने जाओ सुने जाओ कदे न कदे मन लग जा सी, केसो केसो कुकिए ना सोइए असार रात उसके कूट कुने सुन सुने पुगा। सो श्री गुरु नानक देव महाराज गोरख से सिद्धा ने सही किया कि सचारा हो असी महाराज की दुर्गा कि सच्चे हुई है, महाराज के लिए कूरों टूटे पर झूठा संसार में उदम लाओ, क्यों कूरों टूटे पर झूठा संसार में उदम कि लथे हुक्म जाए चलना नानक लिखे ना उस भगत मांगो, उस भगत मांगो उन्होंने तो केवल परमात्मा चाहिए, केवल संसार चो निकलना चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। कबीर साहब कहता परमेश्वर तेरे दरबार च लखा ही ब्रह्मा लखा ही विष्णु लखा ही शिव जी पता नहीं किन्ने हैं, जो जाचो तो केवल ना मैं को अपना नाम दे कहो नानके तत् विचारा बिना भजन नहीं छुटकारा। जे तुसी उस भगत मंगल गमी विच की खुशी मनाओगे, श्री गुरु नानक देव कहते तुसी महाराज की दरगाह सचारा हो जाओगे, ये संसार मगरों लै जाऊंगा तुसी मुक्त हो जाओगे। एक सेठ है हर वेले संत महात्मा की संगत करता हट्टी करता है, पर संत महात्मा की संगत करता कदे पाठ करता कदे सुखमनी साहब कदे जवजी साहब कदे रहदास कदे गुरु संत महात्मा आते तो उन्होंने परमेश्वर दल करता है, उसका भी मन इदा दे है, हर शोक जानके नहीं पैरे में समान, कौ नानक सुन रहे उन्हें मुख्यताएं त्यान, पैकाओं को देत न पैमान त्यान, कौ नानक सुन रहे मन ज्ञानीताएं बखान, उसका मन भी इदा दे है। एक बार वो सेठ हो लखों करोड़ों रुपये का मालिक है, संत महात्मा ने वचन करता परमेश्वर के पास दे महाराज के पास के वचन करता है, तो वो बोली आई कह लगी सेठ जी जिरा 9 लख हार तुम अपनी इस्तरी वास्ते बनाया सामना चोरी हो गया। अच्छा सोची पै गया, अच्छा कल्याण हो गए दस जा, फिर संत महात्मा ने वचन ला पाया कानून फिर कुछ नहीं बनाया।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है। तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदत, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव कि उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नू थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दें, सिर्फ उन्हानु देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हानु देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

आखिया जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्रव ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आया है ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखने हन ता अपने अंदर जाती पा ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में

क्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी। ए रिश्ता आद पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी। आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं इसलिए

बिरद अवस्था एक मनुख की बिरद अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पाश आके बेनती कीती, फकीर साईं मैनू मुक्ति दा उपदेश दियो कि मेरा संसार ते आउणा सफल हो जावे। ये गल सुन के उसनू समझाउण लई बाबा फरीद जी ने सलोक उचारण कीता, फरीदा जां तू खट

मरन वारे ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा। ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणे। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या भाई गुरु नानक दी बाणी कह दी है कि जो होनी है वह प्रबुल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता वह होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपां किते काम ना आई है, तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया वह होके ही रहिंदा है। तां ए गुरु का लाल कहने लगा महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाव कर सकता है, कोई वड़ी गल नहीं। मैं ए गल नहीं मनदा, मनुख नू पता होवे मुसीबत आ रही है कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लेंदा है। जदों इसने ना मनी तां गुरु का सिख कहन लगा भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, अज तो 7 दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना है, जा तू अपना बचा कर ले जे कर सकता है। तो महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ गए। घोड़ा उसते कोल सी ज्यों दौड़न लगा, रात दिन एक करके अपने वल्लों दूर तो दूर चला गया, पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उथे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। सात संगत बोलो श्री वाहे सवेर।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं किया, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडां विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लैंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपया उन्हां नूं भई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओ नहीं जप सकदे।

सेवा लैन कोई संगत नवी आई होंदी है केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली विशेषता ही धरती ते जिन्ने अवतार आए

पंजवी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल तुसी साथ संग जी गल्लां भी कर सकते हो, कई हैरान हो जाएंगे।

अंतरूप मंगल सद जाके थप थप सुनिए घर पाके राज में राज जोग में जोगी तब में तीसर गस्त में भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दा पावन बचन साडे सन्मुख है। गुरदेव जी ने अपने इस बचन राही साडे नाल मिल के ते ए गल प्रगट कीती है कि भाई दुनिया दे अंदर संसार विच होर भी कीमती चीजां हन जो मनुख

प्यास लगी पानी दी पाल कीती एक खूह नजर आया उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन क्योंकि पानी बहुत नीवा सी खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल पानी देखिया बहुत डूंगा है बहुत नीवा है पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंची होए महापुरुष सन अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे पानी पीता पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए चेलिया नू प्याया कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है तू भी भगत है तेरे विच भी शक्ति है तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे नहीं तां मैं पानी नहीं पीना क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे।

जिथे अंब लगा होवे कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी ए। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी ए, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब दे

से खीर बाल जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है। चात्रक मुख जैसे जल तारा चात्र

मुनि ऋषि सारे चाहते नहीं ऐ परमेश्वर तेरे दर्शन हो जाए, पर बिरले काहू डीठला किसे बिरले नूं ही

हर था जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ऐ परमेश्वर तू है कै ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नूं नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्लां ने, या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नू खुश कर लीए। जे ता गुरु नू खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं, घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नू याद करना, माया विच रहंदे होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात

स्वामी जी आए अमृत वेले, बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा, जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना है। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा शुरू किए स्वामी रमन दे पैर लगा के एक एंड दा के उठ राम के राम को पाए। गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नूं इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं। मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा। ये चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा, किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान ली है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

तीसरा दिन चढ़िया ते धन्ना कह लगा हौ भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडतां दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना।

परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली

गौ भैंस मांगो लावेरी। गौ भी चाहिदी ते मज भी चाहिदी, पर हुण लावेरियां लावेरियां कहंदे ने दुध देण वाली। मज भी चाहिदी गां भी चाहिदी, पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

पोत ना अनपढ़। नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है, ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी, तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकदा है, ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकदा है। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने, जेड़े उपदेश करदे ने, ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो, सारयां दी उपालना करन वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

मन क्यों बहरा करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। तकरीबन छेवां हफ्ता है या सतवां होएगा। एक प्रकरण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में साडा मन विक जे। छे विशेषताइयां आप जी नाल गुरु सांझियां करा रहा है। पांच आप जी सरवण कर चुके हो, अज छेवीं दी बारी है। कुछ संगत नवी आई हुई है, केवल बोल के लंघदे हां। पहलियां पांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई खालसा जी धरती ते समय समय अनुसार जितने भी अवतार आए, मच्छ अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, होर भी द्वापर दे, त्रेते दे, होर भी समय अनुसार अपनी ड्यूटी दे के धरती तो चले गए। एक गुरु नानक के दसवें जामे तो बाद भी धरती तो गए नहीं। दसवें जामे तो बाद शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिक गए। तरस खा

जितने भी ग्रंथ ने सत्कार योग ने वो रब दी गल करदे ने पर गुरु ग्रंथ साहब दी विशेषता ही ए रब नाल गल्लां करौंदी है। आखो सतनाम कोई करण वाला होवे। असंगत सारी शब्द पढ़ रही होवे तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लड़ाया दसां पातशाहियां चो जिथे भी शरदा होवे चरणां च मन रखिया होवे सिद्धियां गल्लां होंदियां ने। उस वेले एक बाणी है जिहड़ी गल्लां करांदी है केवल किते स्रोता बनन दी जाच आ जाए। बाकी ग्रंथ रब दी गल करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी रब नाल गल्लां करांदी है। तीसरी विशेषता ना दीपक राग ना मेघ राग सतगुरु ने दोनों नूं जगह नहीं दिती। सानू सड़क बख्शीए जे तेरी जिंदगी च खुशी आ जाए ते एहो जा मेघ नहीं मैनू चाहिदा भंगड़िया वाला कोई भाणा वरत जे ते अत सोग रोने धोने वाला नहीं चाहिदा दीपक भी नहीं लोड़। आखो सतनाम ये समय दे मशहूर राग सन पर महाराज ने इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब च जगह नहीं दिती। डिटेल सरवण कर चुके हो। चौथी विशेषता एक ओंकार तो 18-10-20 तक किधरे भी हों नूं जगह नहीं दिती। नानक सद होवे सृष्टि दा मालक सज्जन ठग वर्गियां नूं इक नदर नाल संत बनाउण वाला पर अपने आप नूं की कवे मैं कुत्ता। नानक सद नानक गरीब नानक दवाना नानक विचारा होर भी कितनी लफज वेख लो किड्डी बड़ी शीशा है साडे अगे अजे भी मुंह ना वेखी है। नानक सब नानक दीवाना नानक बताला नानक गरीब नानक दास नानक विचारा अदास ने एक नकली संत वेखे सन वो गड्डी कीर्तन जदों करन आंदे सी साज भी लियांदे सी नाल अपना गद्दा लेके आंदे सी पहले गद्दा लगना उन्हां दा बखरा फिर साज खुलने। मैं कह कि शीशा गुरु ग्रंथ साहिब दा वेख्या हुंदा ते गुरु नानक दे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च गद्दा ला के बहना। सतनाम ओ जिन्हां ने शीशा वेख्या बाबा आनंद सिंह वर्गे टोया पुट के बहना मैं संगत दी भी बराबरी नहीं कर सकता जे सिख नहीं बनिया। मैं कहंदे एक सवास बिरथा नहीं गल ते है भी जो विशेषताइयां चो शीशा नाल नाल वेखना मैं भाई जिन्हें अपनी जिंदगी च हों नूं नहीं मारिया वो इन्ना जरूर अंदाजा ला लवे कि गुरु नानक दे घर विच उहदा अजे जन्म भी नहीं होया। ये ते कच्ची कलास है शुरुआत गुरमत रिदे गरीबी आवे। एक ओंकार तो 18-10-20 तक कितरे दी हों नूं जगह नहीं ये विशेषता ही है। ते पंजवीं विशेषता ही तुसी पिछले वीरवार सरवण कीती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गल्लां भी करदे किवें करदे ने जो वेरवा सरवण कीता आप जी ने कोई मसला होवे हां ते ना भी देंदे ने अगवाई भी देंदे ने। श्रोमणी कमेटी वालों छपी किताब दे आधार ते आप जी ने प्रकरण सरवण कीता सी। किताब दा नां है वाक विश्वास पुरातन गुरसिख किवें गुरु ग्रंथ साहिब नाल गल्लां करदे सी किवें अगवाई लैंदे सी ननकाणा साहिब दे आजाद कर।

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ किरपे ते विसाओ।

जिसने खो लिया उनू मालिक मालिक लभा है। जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए। सारे आओ प्यारी साध संगत, अज दा समा ए रात खास बख्शिश वाली है। की पता हो जाए बख्शिश, कोई वड्डी गल नहीं। तो आओ तरला तो करो, उद्दम तो करो। वो केड़ा उद्दम है? अपने मालिक अगे अरदास। सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नू बख्शी है। अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जांदा है। राय बुलार रोक।

पिता जी मेरे डंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा, पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथां नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दियां पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार च, गुरु नानक दे प्यार च। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी ए, दही रिड़के सोना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मूंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड्या पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचिव पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहने लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचिव पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचिव पातशाह? अधूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइलां बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने। एक टेलीग्राम दी तार मरदाने, एक राग दी तार है, ए जेड़ा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देंदे ने, किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परोके ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वाली, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की।

अगे अगे मेरा धन गुरु नानक जपाउंदा जा रहे हैं सत करतारी ते पिछे 33 करोड़ देवता मेरे धन गुरु नानक दे तलियां दी खाक चटपाउंदा आखो श्री वाहिगुरु ले मरदाने हुण बोली ना देवे नानकी दी आस पूर्ण करनी है हजूर आए अडोली आके बेबे नानकी दी हथां तों मक्खण चुकिया ते प्यार नाल वचन कीता बेबे बोल सत करतार बेबे दे कन्ना च सत करतार दी आवाज पई सारी सूरत कन्ना विच लै के ए आवाज तो मेरे वीरन भी जापदी है जो नेत्र खोले बेबे ने की तकिया जिस मूरत दा ध्यान पई तरदी सा मूरत सूरत बन के मेरा वीर सामने खड़ोता है वीर मेरा निरंकारी वीर वीर जी आ गए हो हां बेबे तेरिया अरदासा नु सुन के आ गए बेबे उठी तन गुरु नानक दे चरणा ते मत्था टेकन लगी मर्यादा पुरुषोत्तम हजूर ने बेबे दा हथ बेबे दा सिर अपने हथा ते लै लिया ते वचन कीता बेबे मत्था ना टेक तू वड्डी है आखो सिख लै रोक दई बेबे वीरवे तू वड्डा है कि मैं वड्डी तू वड्डा है जिसने कलयुगी जीवां दा उद्धार कीता है सज्जन ठग नूं संत बनाया है वली कनारी दा मान तोड़िया है पत्थर नूं पंजे लगा के मोम करन वालिया तू वड्डा है कि मैं वड्डी ना बेबे मर्यादा भी रखी पर वीर माता नूं मिले हो कि नहीं बेबे पहला तेरे कोल आए मां नूं भी मिले हजूर आए अगे माता तृप्ता बेसुध पई हजूर ने बड़े प्यार नाल जाके गनुमड़ी पाई ते के अम्मा मैं आ गया आंखो सी लई नेत्र खुल गया अज माता तृप्ता नु 12 सालां दा विछड़िया निरंकारी पुत्र मिले आंखो श्री वाहिगुरु मत्था चुमिया प्यार कीता नानकी लिया चोलिया वाली गंढ लियांदी हुण माता तृप्ता अपने सोहणे पुत्र नु एक चोला पवाया दूजा तीजा 12 चोले पवाते आखो श्री वाहे वेख वेख वेख करदी है ते कहंदी है नानक हुण ना बार जे नानक जी अम्मी पिता नु भी मिले हो कि नहीं नहीं माता तृप्ता ने कहा नानक फिर पिता नु भी मिल तेरे प्यार दीवाने होए फिर भी हजूर उठे मैं ते कालू कोल आए ते हजूर ने पिता समझ के मैं ते कालू अगे नमस्कार की थी ते मैं ते कालू पुब्बा मार के रोपया कहन लगा ओ नानक आज मेरी अखा खुल गई मेरे अगे मत्था न टेक मैं कल जुगी जी बंदा गंदा हां तू रब्बी नूर ना पिता जी मर्यादा रखी कालू ने कहा नानक फिर राय बुलार नु मिले हो कि नहीं पिता जी फिर राय बुलार नु मिले हजूर सुर पे अज सारियां नु दर्शन देंदे देंदे जिस वेले राय बुलार कोल आए राय बुलार रो रहा है ते पिया कहंदा है कि सदा दर्शना दी दात बख्शो आखो श्री वाहे ते अपनी याद कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तेरा नाम जप नाम दे सदके नाम ही मिल जाएगा तो आओ प्यारी साथ संगत आप सारे तन हो जो इस समय उधर इंद्र देवता वस रहा है उधर इंद्र देवता हाजिरी लगवा रहा है ते इधर तुसी गुरु नानक दे चरणा में जुड़े ए प्यार है एक वेरी वड्डे बाबा जी दिल्ली दियां संगतां दी अरदास सुन के दिल्ली आए जिथे हुण न्यू राजेंद्र नगर है इथे पहला खूनी नाला हुंदा सी हुण तां बड़ियां आबादियां

में जंगल ही जंगल थे। बाबा जी ने इतने बख्शिश की थी, पर जे आशिक सन वो रोज पहुंच गए सन। प्यारी साहब संगत, पटियाले दे रहने वाले सरदार हरचंद सिंह जी एग्रीकल्चर कमिश्नर पटियाले तो दिल्ली दर्शन करने वास्ते आए राय बहादुर नारायण सिंह जी राधा स्वामी मध्य सन। उन्हां को ठहरे अमृत वेले बाबा जी दे दर्शन करने वास्ते जान लगे तो राय बहादुर नारायण सिंह जी कहने लगे हरचंद सिंह असी भी नाल चलांगे। जी सदके चलो जी। कार च बैठे आ गए, अगे कीर्तन हो रहा है अमृत वेले आसा जी दी वार दा। तो बाबा जी धरती पुट के नीवे बहिंदे सन, बरागन लगाई है हुण भी कर लो दर्शन, बरागन लगा के मस्ती भी झूम रहे हैं। ते प्यारी साध संगत बारिश शुरू हो गई, साहिबान नहीं सी कोई, उत्ते छत नहीं सी, बाहर ही दीवान सजिया होया सी। तो बाबा जी ने इशारा किया, भाई कीर्तन करने वाले उत्ते कपड़े तान दो, तान दिते। ते बाबा जी ने रागी सिंह नु कहा, ए तुकां पढ़ो, केड़ियां आप भी पढ़ ली।

0: विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग विषमाद रागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेर डै बिडाणी विषमाद धरती विषमाद खाणी विषमाद साध लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग विषमाद पुख विषमाद भोग विषमाद शिवत ਨਾਨਕ ਬੁੱਝ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
1: ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸ ਸੰਸਾਰ

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगता है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोक एक गुलाम सन मुगलां दे, दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन। इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी। ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा, शूद्रां दा बहना उठना वखरा। जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान

अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुए उस वेले भाई जैता उस जगह खड़ा सी, वो गुरु तेग बहादुर साहब का शीस लैके दिल्ली तो लुकदा छिपदा आनंदपुर

पखंड नहीं, एक खालसा नाम दिता। पर नाल कुछ गल्ला भी कही है, खालसा कौन है, खालसे विच की खासियत होनी चाहिए है। जे एक खालसे विच सारिया गल्ला ने ताऊ खालसा है, ते ओ गल्ला गुरु साहब।

अगर मेरा कोई पुत्र होवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलां विच की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उहदी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा चली जा, तू मैनु डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैण वखाण। जद ए गल कही, बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने एक ता ना मारे। कहन लगी, हरी सिंह मैं सुनया कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़िया, ये भी सुनया कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, आज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगे, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों